0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न

0: करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मन से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत

0: जय हिंद जी, संधु साहब बच्चे वाले हो।
1: जय हिंद जी, जय हिंद रुड़िया राम जी, सुनाओ की हाल चाल आ।
0: हाल चाल तकड़ा बच्चे वाले, चंगा तू ही अपना दसो।
1: कमाद दे दुआले हो।
0: देखो फसल जेड़ी है ना, जे फसल दे दुआले नहीं होगे ते फसल दे आले दुआले कीड़े मकौड़े हो जाएंगे।
1: हो जाएंगे
0: ये तो हूँ, जा तुसी आले दुआले हो जो जा फिर कीड़े नु आले दुआले
1: मौका दे दो। फसल का निरीक्षण करना ना
0: बड़ा जरूर,
1: बड़ा महत्वपूर्ण है। के देखो आपां

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से

शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
1: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
0: अमेरिका विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् उभौ देशौ आतंकवादकारणात् कष्टम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुखविषयेषु रणनीतिकरूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतनशताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् अमेरिकादेशीयः विदेशमन्त्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीययात्राप्रसङ्गे सम्प्रति भारते अस्ति। सः अस्य मासस्य षड्विंशतिदिनाङ्के अर्थात् श्वः क्वाड् विदेशमन्त्रिणां सम्मेलने सहभागं करिष्यति। पश्चिमबङ्गालराज्ये भारतीयजनतापार्टीति दलस्य प्रत्याशी देवांशुपाण्डा फाल्टा विधानसभाक्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने सुमहद्विजयम् अवाप्नोत्। श्रीपाण्डा एकविंशत्यधिकनवसहस्रोत्तरैकलक्षमतैः भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दलस्य शम्भुनाथ कुर्मिणं पराजितवान्। तत्र कांग्रेस दलस्य अब्दुर रजाक मोल्लाः तृतीयस्थाने, अपरतः तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खानः चतुर्थस्थाने अवर्ततां। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदानकाले बृहत्स्तरे दुराचारस्य आरोपानन्तरं निर्वाचनायोगः फाल्टानगरे पुनः मतदानस्य आदेशं प्रदत्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अस्मिन् मासे एकविंशतिदिनाङ्के पुनः मतदानम् अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रपतिभवने 26,000,000 प्रथमे नागरिकालङ्करणसमारोहे 660 पद्मपुरस्कारान् प्रदास्यति। अत्र उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, अन्ये च सम्मान्यजनाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। देशस्य मध्योत्तरपश्चिमीय दिग्विभागेषु अतितापकारणात् जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेषु प्रायः समाना एव स्थितिः आगामिभ्यः 6 दिवसेभ्यः प्रवर्तिष्यते इति भारतीयर्तुविभागेन सूचितम्। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 30 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुणो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ते अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नवी दिल्ली विच वख वख मुद्दियां ते व्यापक विचार वटांदरा कीता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने भी अमरीकी विदेश मंत्री दे नाल मुलाकात की। केंद्रीय सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE नूं सुचारू पुनर्मुलांकण प्रक्रिया यकीनी बनाउण लई IIT मद्रास ते IIT कानपुर दे प्रोफेसरां ते तकनीकी माहिरां दी एक टीम नियुक्त करन दे निर्देश दित्ते ने। पछमी बंगाल सरकार ने सारे जिला मजिस्ट्रेटां नूं गृह मंत्रालय दे दिशा निर्देशां अनुसार शक्की गैर कानूनी विदेशियां ते डिपोर्टेशन दी उड़ीक कर रहे विदेशी कैदियां लई हिरासत केंद्र स्थापित करन दे निर्देश दे दित्ते ने। पाकिस्तान दे बलूचिस्तान सूबे विच एक रेल पटड़ी ते होए धमाके विच 24 लोकां दी मौत हो गई है ते कई होर जख्मी हो गए ने। पंजाब सरकार वल्लों साल 2025-2026 विच पाणी बचाउण वाली तकनीक अपनाउण वाले किसानां नूं 35,38,00,000 रुपए जारी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों दुनिया भर विच सूबे दा नां रोशन करन वाले 87 नामी खिडारियां नूं महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार नाल नवाजिया गया। पंजाब सरकार वल्लों आउंदे झोने दे सीजन तो पहलां किसानां लई बिजली संबंधी सारे प्रबंध मुकम्मल। पंजाब चोण कमिशन ने सूबे च 26 मई नूं होण वालियां नगर कौंसल ते नगर पंचायत चोणां लई वोटर फोटो शनाख्ती कार्ड तो इलावा 15 होर बदलवे दस्तावेजां नूं पछाण दे सबूत वजों मानता दित्ती। फिरोजपुर काउंटर इंटैलीजेंस ने सरहद पारों नशा तस्करी गिरोह दा पर्दाफाश करदिआं 4 मुलजमां नूं 28 किलो तो वध हैरोइन ते 9.5 लाख दी ड्रग मनी समेत गिरफ्तार कीता। ते मौसम विभाग ने अगले

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीद

0: तो मेरे मन में यही था भी मैं नया रास्ता बनाऊं जिस पे आगे चल के लोग भी ये सोचे भी हम भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो।
1: साल 2025 विच गुरिंदर वीर सिंह ने बेंगलुरु दे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स विच 10.20 सेकंड का समा कट के तत्काली राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया सी। अंडर 20 चैंपियनशिप च उन्होंने कांसे का तमगा जितया सी। दो बार नेशनल चैंपियन रह चुके ने। उन्होंने करियर का राह पदरा करन विच उन्होंने माता पिता का बहुत वड्डा योगदान है। उन्होंने पिता कमलजीत सिंह कहिंदे ने,
2: जो असी छोटे हुंदे शुरू सोचा सी अज रब ने साडी मनोकामना पूरी कीती है जी, लागे पहुंचे जी। हजे टारगेट हैगा जी, टारगेट बहुत वड्डा हैगा, वो टारगेट पूरा करना जी। आप भी सारे अरदास करो, बेनती करो जी। वो तो जब मुंडा तो उसे बैठा कला सी, सानू रात में टिकाई नहीं होंगी सी गल कि रात सवेरे मैच है। मैं वॉलीबॉल खेलता सीगा तो मैनू शौक सीगा, मैं शौक करके मैं ये मुंडा मेरा शौक सी मैंने प्लेयर बनाना, बस वो करके मैंने गेम च पाया जी। मैं वॉलीबॉल खेलता ही मैं फ्यूचर गेम च पाया जी, पहला गेम खेलता सी। मैं बेटी कर रही मार, मैं तो सारे पंजाब इंडिया कहना भी माड़ा जहा अरदास कर भी जो वही मन की इच्छा पूरी हो।
1: माता गुरविंदर कौर का मानना है कि उन्हों का पुत सिर्फ तो सिर्फ अथलैटिक ट्रैक बारे ही जानता है, जिंदगी होर किसी गल का उन्होंने नहीं पता।
3: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਹੋਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਣੋਗੇ।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1924

0: वन में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
6: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका

0: करता है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
0: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान

0: के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
4: We launch our

0: कहा कि 1,000 सिविल जाब्ता किसी भी कबाइली अधिकारा की उल्लंघना नहीं करेगा।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के विरसे का हवाला देंदे हुए श्री शाह ने कहा कि उन्होंने यह संदेश दिता सी कि कबायली भाईचारियों को जंगलाती जमीन की मालकी होनी चाहिए है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कबायली भलाई वधा के 1,50,000 करोड़ रुपए कर दिता, जदों की कांग्रेस सरकार दौरान यह सिर्फ 28,000 करोड़ रुपए सी।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा उम्मीदवार दीवानशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 तो वध वोटों के फर्क नाल जीत ली है। श्री पांडा ने अपने नज़दीकी विरोधी अते CPIM के उम्मीदवार शंभूनाथ कुरमी नूं हराया, जिन्हां नूं 40,645 वोटां मिलियां। फालता विच 21 मई नूं सारे 285 वोट केंद्रां ते केंद्री बलां दीआं करीब 35 कंपनियां दी सुरक्षा हेठ दुबारा वोटिंग होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा उम्मीदवार दीवानशु पांडा नूं रिकॉर्ड फर्क नाल फालता विधानसभा चोण जित्तण ते वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जित पश्चिम बंगाल दे लोकां दे भाजपा प्रति अटुट विश्वास नूं दर्शाउंदी है। अज पेट्रोल दीआं कीमतां विच 2.61 रुपए अते डीजल दीआं कीमतां विच 2.71 रुपए दा वाधा कीता गया है। पिछले 2 हफ्तिआं विच पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां विच इह चौथा वाधा है। हुण दिल्ली विच पेट्रोल 102.12 रुपए फी लीटर अते डीजल 95.20 रुपए फी लीटर उपलब्ध होएगा। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तरीक होण वालियां कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट 2026 प्रीख्यावां मुलतवी कर दिता है। NTA ने कहा है कि यह फैसला सरकारी नोटिफिकेशन मुताबिक ईद उल जुहा या बकरीद की छुट्टी की तरीक विच बदलाव के मद्देनज़र लिया गया है। एजेंसी ने दसिया कि प्रभावित उम्मीदवारों लिए सोधियां प्रीख्यावां तरीकों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सैकेंडरी सिक्ख्या बारे केंद्रीय बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात दीआं बोर्ड परीक्षावां लई उत्तर पुस्तिकावां दीआं स्कैन कीतीआं कॉपियां प्राप्त करन दी आखरी तरीक अज तक लई इक होर दिन लई वधा दित्ती है। CBSE ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों नूं बेनतियां जमा कराउण लई ढुकवां समां देण लई लिया गया है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ते अमरीका दहशतगर्दी के सारे रूपां ते प्रगटाव्यां नाल लड़न विच बेहद दिलचस्पी रखते ने। कल नवी दिल्ली विच अमरीका के 250वें आजादी दिवस समारोह विच इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ते अमरीका नूं दहशतगर्दी नूं बिल्कुल भी बर्दाश्त करन बारे हमेशा स्पष्ट होना चाहिए अते इसे लई उन्हां दा दहशतगर्दी विरोधी सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: उन्हें कहा कि दोवां देशों का विश्व आर्थिकता नूं खतरे तो बचाउण ते दुनिया नूं होर विकल्प प्रदान करन विच सांझा हित है। अमरीकी विदेश मंत्री अते NSA मार्को रूबियो की यात्रा का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा समकाली समय विच भारत अमरीका संबंधों की महत्ता नूं उजागर करती है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कल नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे अमरीका के 250वें आजादी दिवस के जश्न नूं मनाउण लई कराए गए एक समागम विच अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर नूं फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपना करीबी दोस्त दसते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि दोवां देशों विचकार संबंध पहलां नालों कितें ज्यादा मजबूत होए ने। उन्होंने अपने आप नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: जदू जदू भी बने रे बोले मैनू तेरे सोवे मेरे सजना।
1: बनेरियां ते कां ते उदों बोलणगे जी जदों प्यार मुहब्बत हलीमी सेवा भाव ये सारे जज्बे मन विच वसते होणगे, क्योंकि रिश्तियां दे विच मुहब्बत होएगी ते परौने घर आउणगे, ते कुदरत दे नाल प्यार होएगा ते फिर ही प्रदूषण तो जी जंत बचणगे ते बनेरियां ते बोलणगे ना। सो रिश्तियां नाल कुदरत नाल प्यार करन दी कोशिश करिए। मैं एक पंजाब दी प्रोग्राम च हुण तुहानू नॉटी जट्स फिल्म दा गीत सुना रहे हैं, रोशन प्रिंस ते पैनी गरेवाल दा गाया संगीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं।

0: गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
0: बिल्कुल सही।
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
0: जी जी जी तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है,
1: जी सुना तो है।
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है,
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है,
0: जी
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे

0: छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।

0: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
1: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
0: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
1: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
0: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आ जा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
1: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान।

0: नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का यह क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये लो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी। हाँ।
2: अरे अरे इसको भी डालो।
3: हाँ हाँ
2: ये देखो
3: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
2: प्यारा लग रहा है।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे ये। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
3: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे हमारा शहर हो।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम।

0: वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करने न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: तुसी NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी। आकाशवाणी का ए

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: दस बज के 31 मिनट ते 40 सैकेंड होए ने जी। आकाशवाणी जलंधर ते हैलो फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है, जिस विच तुसी फोन करके अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुन रहे हो। साडा नंबर है 0181 23 42 173। हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हो?
2: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ। मैं पिछले
1: होर सुनाओ जी, की हाल ने तुहाडे, ठीक ठाक हो?
2: जी सर, मैं ठीक हूँ, और आप?
1: मैं भी बहुत बढ़िया। ते केड़ा गीत सुनने लई फोन कीता?
2: सॉन्ग है, मूवी का नाम है बड़े मियां छोटे मियां, और सॉन्ग है मखना, और डेडिकेट मेरी रानूजीत को रहेगा।
1: ठीक है जी, तुहाडी फरमाइश दा गीत तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं, बहुत मेहरबानी कॉल करन दे लई।
2: ओके।

0: ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਔਨ ਇਨ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची बाजपेयी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों से जुड़े लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। यह स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतराल

0: से मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 874 अंक के उछाल के साथ 76,289, जबकि निफ्टी 264 अंक बढ़कर 23,983 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तिहत्र किलो हर्ट्स, टीआरएम 854 किलो हर्ट्स, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेश है प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

पद्मा टॉकीज ने नगर मध्य प्रदेश तो सानू मैसेज किया है। मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल कनेडा तो, जगतार जग्गा तोला किंगरा तो, दिशा मोला सोनी गिल, पाल गिल, गुरदयाल गिल, मुक्तसर पिंड मोला तो मैसेज कर रहे हैं। इस तरह यह मैसेज सानू मिलया है जी, मरहरा दरवाज़ा एटा तो, नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, जशफ अब्बासी होना का मैसेज सानू मिलया। अगला मैसेज असी लै रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर तो, जॉन डिस्क्रैटो, रोजी डिस्क्रैटो, पर्ल डिस्क्रैटो तो, विलियस डिस्क्रैटो होना दा। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सानी, पिंगा वाला चौंक, गुराया तो सानू जिहड़ा आ वो मैसेज भेज रहे ने। इस तरह ये मैसेज सानू मिलिया कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया तो, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा, जिला गाजीपुर तो, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय होना का यह सानू मैसेज मिलिया। बेअंत सिंह बस स्टैंड जलालदीवाल जिला लुधियाना तो पहुँचे ने। इस तरह यह मैसेज सानू मिलिया है जी, बीपीओ मिड्डू खेड़ा, जिला श्री मुक्तसर साहब तो, कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा होना दा। पिंड नथाना जिला बठिंडा तो, हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता होना दा सानू मैसेज मिलिया है जी। ये मैसेज सानू मिलिया पहाड़गंज मुल्तानी टाणा तो, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा तो, मधु नायक होना का मैसेज सानू मिलिया। इस तरह सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो, टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका तो, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज होना ने मैसेज किया है। ये मैसेज पटेल नगर मलोट तो, डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता राणी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया, गुड्डू होना का सानू मिलिया। इस तरह अगला मैसेज सानू मिलिया जी, सादुल शहर राजस्थान तो, राम कुमार रिवाड़ ते चंद्रकला रिवाड़ होना का मैसेज है। ये मैसेज सानू मिलिया है जी, आदर्श नगर मलोट पंजाब तो, राज शर्मा, मीना शर्मा, जोगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सपना शर्मा, निवान शर्मा होना का। आहुन वद्या प्रोग्राम दे विच गीत वल, सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दियां आवाज़ां दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

सुंदर जायसवाल ते सुमन जायसवाल होना दा मैसेज है। अगला मैसेज सानू मिलिया है जी सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सनी मनी, काका बिट्टू, लाडी मोहन, मास्टर जनक नगर जलंधर तो इन्होंने सानू मैसेज किया है। ये मैसेज सानू मिलिया है जी, लिखण वाले ने ग्राम राजौरी, राजौनी, जिला महोबा, बुलंदखंड, उत्तर प्रदेश तो। लिखण वाले उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल ते पूरा परिवार है जी। इस तरह ये मैसेज सानू मिलिया है जी, इन्होंने लिखा गांधी नगर गुजरात तो। सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल ते निशा होना दा मैसेज सानू मिलिया है। प्रोग्राम दे विच अगला मैसेज सानू मिलिया है जी, जिला नांदेड़ जैताला महाराष्ट्र तो। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल ते दुर्गेश्वरी जायसवाल होना दा मैसेज है जी। ये मैसेज सानू मिलिया पिंड संदोहा नेड़े मोड़ मंडी तो। जगराज सिंह कनकवालिया, गंगा राम, मोहन लाल शौंकी ते अरविंद कुमार जलंधर तो मैसेज कर रहे ने। इन्हां दे नाल जसवंत सिंह, पोता एकम, पोती मनकीरत, जंडवाला, मीरा सागला, फाजिलका तो मैसेज कर रहे ने। इस तरह ये मैसेज सानू मिलिया सैक्टर 5 कुड्डी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान तो। रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान ते बेबी गर्व होना दा मैसेज है। रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, दलजीत दोसांझ की आवाज़ के कहते सानू गीत जड़ा सुना दिता जाए मैसेज कर रहे ने। वाइट फील्ड बेंगलोर तो भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तवा, दिव्यांद्रू भूषण, संस्कृति ते पारूष उन्हों का मैसेज सानू मिलिया। इस तरह जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते पूरा डागला परिवार, रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो मैसेज कर रहे ने। यह मैसेज बीड शहर महाराष्ट्र तो। नंद किशोर कटे, संगीता कटे, साक्षी कटे, जशरी महतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल तो तंजे ते इन्हां दे होर साथी मैसेज कर रहे ने। इस तरह सैक्टर 20A चंडीगढ़ तो निश्चल ऋषि, संजू ऋषि, सौरभ ऋषि, कृतिका ऋषि, लड्डू ऋषि, अमरजीत ऋषि, नीलम ऋषि, राहुल ऋषि ते ऋषिका ऋषि उन्हां दा मैसेज सानू मिलिया। ये मैसेज सानू मिलिया जी फाजिलका पंजाब खेड़ा तो। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा उन्होंने मैसेज सानू कीता है। अगला मैसेज सानू मिलिया जी, ये कह रहे ने मनीला फिलीपीन तो। मदन मोहन लहर, सरबजीत लहर, संजू लहर, नितिका लहर, अजय लहर, अंजील लहर, लाडला पोता अर्नव लहर हुना दा मैसेज सानू मिलिया। इस तरह संतोष भाकरे, सुकन्या ते सविता भाकरे, सुनैना भाकरे हुना दा मैसेज सानू मिलिया। शाहजी नगर, देगलूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र तो इन्होंने मैसेज किया है। जाडला टाउन, SBS नगर तो सानू मैसेज कर रहे ने विनोद संधु, कमल संधु, रितेश संधु, आकांक्षा संधु, भारत भूषण संधु हुना दा मैसेज है जी। इसे तरह दादा बाऊ बाबू रोड, गिरहेड़, झारखंड तो मोहम्मद जासीन, अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहत ते इन्हां दे बेबी चाहत होना दा सानू मैसेज मिलिया। ये मैसेज सानू मिलिया जी हरजिंदर सिंह पाटिया, इंजल पाटिया, सोनू पाटिया, पप्पी पाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर तो सानू मैसेज कर रहे हैं। तो हुण प्रोग्राम दे विच चलदे आ गीत दे वल। सरदूल सिकंदर दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत तुहानू सुना रहे हैं।

0: Halata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ

0: पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम हिप 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, टीआरएम 854 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स, अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। लो हुण तुहानूं दस दईए साढ़े इस मीटर तो अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समें बारे।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बाकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनक्किद की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल योम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। यह अवार्ड लोगों के गिराकद्र कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, समाजी काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत व सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: क्वाड मुल्कों के वज़रा खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वांग, जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा है कि लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अलाक़वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल है और ये भारत बैरुल काहिल खत्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम पर ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मस्कूरा ग्रुप के मौजूदा सदनशीं होने के नाते इस मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में वेलमिंगटन में क्वाड की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने की खातिर अहम इकदामात का ऐलान किया था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने में ख़ास तौर पर दिलचस्पी के हामिल हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए।
2: We must always be clear.
3: हमें दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसीलिए दहशतगर्दी से निपटने के मामले में हमारा इश्तराक इंतहाई अहम है। आवाम से आवाम के दरमियान रابطے भी हमारे ताल्लुकात में खसूसियत के हामिल हैं क्योंकि इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी समझबूझ में मदद मिली है और इन्हें एक खास मकाम हासिल है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान के इनकाद में बार बार होने वाली कोताही पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये बात मायूस कुन है कि इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने पेपर लीक होने के पहले के तनाज़े से कोई सबक हासिल नहीं किया। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी और मरकजी जाँच ब्यूरो CBI से जवाब तलब किए हैं। इन दरख्वास्तों में मेडिकल दाखिला इम्तिहान के इनेकाद के लिए मौजूदा एजेंसी की जगह एक ज़्यादा मजबूत और ख़ुद मुख्तार इदारा कायम किए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करके उन सिफारिशात पर अमल दरामद की तफसीली जानकारी फराहम करे जो इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सरबराही वाली कमेटी ने मस्कूरा एजेंसी के कामकाज को असरनौ तरतीब देने के लिए पिछले साल की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: कोड आसाम बिल 2026 पेश किया। इस तरह यह बिल पेश करने वाली शिमाल मशरक में आसाम पहली रियासत बन गई है, जबकि मुल्क में बीजेपी की सरकार वाली ये ऐसी तीसरी रियासत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बरादरियों को यकसां सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज रहें। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: अजीम इनकलाबी शख्सियत राज बिहारी बोस के यौम पैदाइश पर वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि राज बिहारी बोस ने अपनी गैर मामूली तंजीमी सलाहियत के जरिए आज़ादी की जद्दोजहद में एक नई तवानाई पैदा की। मगरबी एशिया में इलाकई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासी के हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आजमीन हज मीना में जमा हो रहे हैं। आज़मीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मीना जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो रात मीना में गुजारेंगे और कल तलबिया का वर्द करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां हज का रुकन आज़म अदा किया जाएगा। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने के लिए वहाँ गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में दिन का टेम्परेचर 44 और 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। ऑस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट का बाजाब्ता आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 8:30 बजे होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा ये सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर्स के बजाय शहर ऑस्लो में हो रहा है। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दी जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और CBI से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मुड़ एक बार फिर तो प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रोग्राम दे विच हुण अगला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं अरजीत सिंह की आवाज़ दे विच गाया होया, जब हैरी मैट सेजल फिल्म दे विचों लिया। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित

0: 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था।

0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा।

0: का नौतपा यानी साल के वो नौ दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन पांच जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से चौथे स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते

0: खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर या 873 किलो हर्ट्स, टीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुण पेश है प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसी सईदा बानो दे गाए लोक गीत सुनोगे।

हरिए हरिए डेके नी फुल दे दे, अच मैं जाना पेके नी फुल दे दे। आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले तुसी रंगली धरती प्रोग्राम के विच सईदा बानो दे गाए लोक गीत सुन रहे हो। आओ हुण अगला लोक गीत इन्हां दा ही गाया सुनते हाँ। जोगियां दे कन्नां विच कच दियां मुंदरां, मुंदरां दे विचों तेरा मूँह दिसदा, वे मैं जिहड़े पासे देखां मैनू तू दिसदा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज राष्ट्रपति भवन विखे पद्म पुरस्कार प्रदान करनगे। सर्वोच्च अदालत ने नीट प्रीख्या विच वार बार हो रही गलतियां ते चिंता प्रगट कीती। कहा राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद तो सबक नहीं लिया। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 28 मई नूं होण वाली CUET अंडर ग्रेजुएट प्रीख्या 2026 मुलतवी कीती। कबाड़ विदेश मंत्रियों की मीटिंग कल नवी दिल्ली विच होवेगी। भयानक गर्मी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों किए ऐलान मुताबिक अज तो पंजाब के सारे सरकारी दफ्तर स्कूलों ते कालजा का समा बदल के सवेरे 7:30 तो दोपहर 1:30 तक होया। समूह सरकारी दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में सवेर की शिफ्ट सवेरे 7 to 10 AM तक जबकि दूजी शिफ्ट सवेरे 10:30 तो दोपहर 1:30 तक हुई। पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपए और डीजल की कीमत 2.71 रुपए प्रति लीटर का वाधा होया। पंजाब सरकार ने कल 26 मई नूं नगर निगमां नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं हो रहीआं आम चोणां दे मद्देनज़र छुट्टी का ऐलान किया।

मौसम विभाग वालों दिल्ली च अगले तीन दिनों दौरान लू चलन बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भी लू की स्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट विच दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स नूं 40 तोड़ा नाल हराया। ए सन हुण तक दीआं मुख चोणवीआं खबरां। डीटीएसई पंजाबी प्रसारण सेवा दा इह जलंधर केंद्र है। पेश है प्रोग्राम तुहाडा अपना प्रोग्राम जिसका तुहानू बेसब्री दे नाल इंतजार हुंदा है। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम विच तुसी आप लिखे हुए खतां नूं भेजदे हो ते बड़े ही खुशी दे नाल अपने नां सुणदे हो ते गीतां नूं भी सुणदे हो। ते इस प्रोग्राम दा नां है जी चिट्ठियां मिठियां। ते दोपहर दे 3 बजे तो लैके 4 बजे तक तुसी सुणदे हो जो डीटीएसई पंजाबी प्रसारण सेवा तों। यह प्रोग्राम चलदा है जी रोज़ रोज़। तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप तो भी तुसी इस प्रोग्राम नूं सुन सकते हो। फिलहाल मैं हाँ जी तुहाडी दोस्त कृतिका कौशल ते मेरे वालों सारे नूं नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। ते सब तो पहला एक प्यारा जिहा गीत सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे सारयां दे वास्ते सुणदे हां एमी विर्क दी आवाज़

जी बिल्कुल, मैं भी भुल गई हाँ कि टाइम भी दसना है। लो जी टाइम हो रहा है 3:32 ते 37:38 हो चुके ने, ते खत पहुँच चुके ने। लिख रहे ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही ते मिराज जहाँ, पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोन सिंह, निशान सीरत कीरत ते दादी जसवंत कौर, नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति रानी ते गुरमंत, पिंड माधोपुर तो बलविंदर बिल्ला, पप्पू गोगी, आशु करण गगन, बेअंत कौर, बलजीत राज ते माता महेंद्र कौर। ते देखो जी, एक खत विच दादी दी जो है गल कीती गई है, यानी कि दादी दा नाम लिखिया, ते इस खत विच उन्होंने अपनी माता जी दा जो है नाम लिख के भेज दिता है। यही हुंदा ना कि दूजे नूं देख के आपां उस तरह दी गल्लां करदे हां, पर दूजे जे कोई लड़ाई झगड़ा करदा तां करदे हां, ते आपां क्यों उस लड़ाई झगड़े विच पै जांदे हां। जे कोई वधिया जी गल हो रही है तां उस विच शामिल हो के वधिया जी गल कोई कही जावे तां किन्नी ज़्यादा वधिया गल है। ते देखो ना, दादी दी गल सुन के, यानी कि दादी दे नाँ सुन के इन्हां ने अपने इस खत विच अपनी माता दा नाँ शामिल कर लिया। फ्रेंड्स कलोनी करनाल तों गुरविंदर सिंह पांदा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमी ते मनविंदर सिंह पांदा, पंचकुला सैक्टर 9 तो लिख रहे ने आशु चुग, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव ते नाल इन्हां दे राधे ते भाविक। गांधी रोड रोपड़ तो लिख रहे ने हरदेव मिका, बलविंदर, जतेक ते मिका बिरक ते सारा परिवार, ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हां जी आपां। सुखशिंदर शिंदा दी आवाज़ विच एक गीत है, बहुत ही प्यारा है, सुनदे हां। तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

चल रहा जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते लो जी चिट्ठियां पढ़ लैने आ। लिख रहे ने जिला फिरोजपुर तो जगजीत सिंह, टहल सिंह, कुलदीप सिंह, गुरचैन, गुरसेवक, बूटा सिंह, हनेक सिंह, अजीत सिंह, जीत सिंह, सहोता ते सारा परिवार। पिंड कुणियाणा जिला फजिलका तो बाबा त्रिलोक जी, इन्हों दा दोता शिवजोत सिंह, गुरसिमरन, प्रीत, राजदीप दोस्त ने, बलतेज ते भोला सुहाग। लिख रहे ने अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल, कीर्ति वर्मा, सिद्धक वर्मा ते सारा वर्मा परिवार। लिख रहे ने अर्शदीप, सुरजीत सिंह अमरकोट तो। पिंड काकराली तो लिख रहे ने, यानी कि पंचकुला तो लिख रहे ने वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, नेहा, अंजलि, गुरमीत कौर, शुभम, लवली ते सारा परिवार। कोई भी गीत सुनना चाहते ने लिख रहे ने रमेश चावला, पेंड ते डाकखाना कुइयां सरवर तो। इन्हां दे नाल ने हेमंत, दीपक, रमेश, रिजू बब्बू, विहू ते सारा चावला परिवार। ते इन्हां सारे ते फरमाइश ते सुना रहे जी आपां अखिल दी आवाज़ विच गीत है। सुनदे आ तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: नहीं कल,
1: क्यों क्यों
0: आज नहीं कल,
1: ये तो एक बहाना है
0: वापस घर भी जाना है।
2: जी दोस्तों, पुराने गीतां दी ये खासियत है कि ये दिल तो निकलदे ने ते सिद्धा दिल तक ही पहुँचदे ने। जिंदगी अगर सफ़र है तो अजिहे गीत उस सफ़र दे सब तो खूबसूरत हम सफ़र ने। पर अज दा ये प्रोग्राम सदाबहार गीतां दा सफ़र मैनू पूजा हांडा नू हुण इत्थे ही ख़त्म करन दी इजाज़त दे दिओ। फिर मौका मिलेगा, फिर मिलांगे। उदों तक लई तुसीं सारिआं ने रखना अपना ख्याल। हसते रहो, वसते रहो, जिंदगी नू मानदे रहो। जिंदगी जिंदाबाद।

आत्म रस जिह जानिया हर रंग सहजे माण, नानक तन तन तन जन आए ते परवान। इस श्लोक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है, जो उन्हां सत पुरखां दी महिमा नूं बयान करता है, जिहड़े प्रभु दे नाम रस नूं माण के आत्मिक रंग दी गूढ़ी रंगत विच रंगे जांदे ने। आप अनुसार ओ जन धन हन ते अकाल पुरख दी दरगाह विच परवान हुंदे हन। आप इत्थों तक बयान करदे हन कि ऐसे संत जना संत महापुरशां दा इस लोक विच आउणा धनता योग है, जो आप भी इस भवसागर विचों पार लंघ जांदे ने ते कुल सृष्टि दे जीवां नूं भी पार लंघा दिंदे ने। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां सिरलेख अधीन उचारी हुई बाणी विच एक पदे दी पंक्ति विच साहिब फरमाउंदे ने, तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। सरवण करदे हां इस पदे दा गायन भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे पासों।

0: तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। गौड़ी सुखमणी महला पंजवा सिरलेख अधीन उचारी हुई बाणी विच्चों इस पदे दा गायन कर रहे सन भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दा रागी जत्था। गुरमत विच नाम नू पार जात रुख काम तेन गऊ दे तुल ही नहीं, सगों इस तो भी उच्चा स्थान प्राप्त है। नाम दी रंगत मजीठी रंगत है, ए रंगत इस कदर अजीम जज्बा पैदा कर दी है कि इस नाम विच रंगे हुए सूरमे खुद नू कुर्बान कर जांदे ने। शहादत खिड़े मत्थे देण वाला ही शहीद अखवांदा है। शहीद दरअसल अरबी भाषा का मूल शब्द है, जिसका अर्थ है शादी परना अर्थात गवाही देना। गुरमत विच सच दी शादी परन वाले नू जां सच वास्ते कुर्बान होन वाले नू शहीद बयान कीता गया है। गुरबाणी विच राग श्री राग विच श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने कि पीर पैगंबर धार्मिक आगू सतपुरश शहीद शेख काजी मुल्ला ते सच्चे फकीर नता प्रति उस प्रभु दे गुण गायन करदे हुए उसकी बख्शिश दे पात्र बनते हैं। ताते इन्हां दी पहुंच प्रभु दे दर घर तक हुंदी है। साहिब फरमाउंदे ने पीर पैगंबर सालक सादक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद। बरकत तिनका अगली पढ़दे रहन दहूद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच शहीद की परिभाषा अते संकल्प नू बाखूबी बयान किया गया है। सुनते हाँ प्रोफेसर अपिंदर सिंह होरां पासों वार्ता गुरबाणी विच शहीद दा संकल्प।
1: शहीद दा संकल्प दृढ़ करन लई पहलां शहीद शब्द दे अर्थां नू समझण दी लोड़ है। शहीद शब्द अरबी दा कुरानिक शब्द मन्या जांदा है, भाव शब्द अरबी दा है ते कुरान विच वरत्या गया है। इस करके शहीद शब्द दे सही अर्थ समझण लई कुरान दी उस आयत नू वाचना जरूरी है जिस विच शब्द की वरतों की गई है। नौवीं आयत के 48वें सूरे अनुसार असी निरसंदेह तैनों अपने गुणा वास्ते शहीद

आत्म जिणै सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1: ਹੈਲੋ,
2: ਯਾ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਆਜ ਹਮ ਆਪਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਚਲ ਰਹੇ ਖਾਤੋਂ ਸੇ ਅਨਿਵਾਰਯ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਯਦਿ ਆਪਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਕਿਰਪਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਓਂ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ 9 ਦਬਾਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ।
3: ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।
0: ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
4: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
4: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वो ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की।

0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ਤੇ ਲਹੋ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

शाम 7:40 ते प्रोग्राम विविधा तहत सुनोगे वार्ता महान देशभक्त रास बिहारी बोस। वार्ताकार होंगे राजपिंदर कौर। रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे प्रोग्राम स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे सुनोगे पंजाबी नाटक पक्षी दी हवा। नाटक दे लेखक ने चमन अरोड़ा, भाग लैन वाले कलाकार ने सुनील जोशी, सुदेश वर्मा, सुरेंद्र कौर ते सरिता तिवारी, पेशकश गुरविंदर सिंह। रात 10:02 तो सुनोगे मुशायरा। शायरीन होंगे डॉक्टर अनवार अहमद अंसारी, अमनदीप जोशी अजीज, रेनू नैयर ते कमल नयन शर्मा। रात 10:30 बजे चंद गजलां समात फरमाओगे। हिंदी, पंजाबी ते अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीतियां जाणगियां। ਏਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗਾਣਾ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौंक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है।

0: ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अलर्ट जारी की है। ते आखिर चो खास खबरां एक बार फिर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पंजाब राज चोण कमिशन ने कल स्थानक आम चोणां नूं शांतिपूर्ण ते सुचारू ढंग नाल करवाउण लई सारे प्रबंध मुकम्मल किए। सरकार वल्लों कल नूं छुट्टी दा ऐलान। पंजाब दे मुख चोण अफसर आनंदिता मित्रा ने कहा सूबे च विशेष तीबर सोध शुरू होण तों पहलां 90% तक प्री मैपिंग करन दा टीचा मिथ्या गया। सूबे दे वोटरां नूं BLOs नाल वध तों वध सहयोग करन दी अपील। अत की गर्मी के मद्देनज़र अज तो पंजाब के सारे सरकारी दफ्तर स्कूलों कॉलेजों का समा बदल के सवेरे 7:30 तो दोपहर 1:30 तक होया। तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दौरान पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ लू चलन की पेशीनगी की। इस ही प्रदेशक खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंगे। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुम सुनोगे शाम 7:30। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकदे हो। शाम दे 6:30 वज चुके ने। आहुन सुणदे हां देहाती प्रोग्राम।

0: हाँ जी बल साहब, देखो होया देश पराया, ये लड़ीवार नाटक है अपना। ये अज अठवीं किश्त जिहड़ी है वो आपां सारे नाल सांझी करदे आं।
1: ठीक है जी, सुना दिओ।
0: पेशे अवतार सिंह बिलिंग दे नावल ते आधारित लड़ीवार पंजाबी नाटक होया देश पराया दी अठवीं कड़ी, रेडियो नाटक रूपांतर बखशिंदर।

0: मुंह मर धतूरे के साथ और पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं।
1: मेरे तो हाथ खड़े मेजर साहब, वो दसो केड़े खूच पै के मरा, कितने ले जावा, किदा दा इलाज करा, किदा दी राखी करा, मेनू कोई हल नहीं दिसदा, मेनू दसो की करा।
0: वो नशा छुड़ाओ सेंटर ले जा यार।
1: वो जनाब वो नशे छुड़ाउंदे नहीं, नशा खान ला देंदे आ।
0: वो भी कोई तो फिर करना पऊ।
1: हाँ कुछ तो करना पऊ, पर की करे।
2: नरेंद्र दे भरा सवरने ने शराब छड़ के पटड़ी बने तक बड़ी बल्ले बल्ले कराई हुई है, उसे तो ही कोई गुर लैन ना जाया जावे। चल मना अज जलनपुर का गेड़ा मार दें, फिर शहर दी सैर लाज दा लाज। हले 40 मिनट ही लगे होने मसा अपन पहुंच भी गए। मैनू लगता स्वर्णा भी बाहर अंदर जाने लिए खून ही आया होना है, आप भी खून ही चलते हैं मना। हले आता स्वर्णा ही तुरै फिरद लगता खूह के तौर से। सत श्रीकाल स्वर्ण सिंह भीरे।
3: सत श्रीकाल भाइया जी, तुसी मड़ासा जिहा मारिया होने करके सियाने नहीं जाते।
2: मैं भी तेरे अगू खूह का गेड़ा मारन गया सी, खेतों ही सीधा जलनपुर हो तुरया।
3: वो एड्डी भी केड़ी कोई एमरजेंसी पै गई के कपड़े लीड़े भी नहीं बदल सकिया।
2: बस अमरजेंसी ही समझ लिया स्वर्ण सिंह, इतों एक गुर सीखण आया
3: मेरे को। मेरे को यह जहा कि गुर है जो तेरे को है नहीं भाइया जी।
2: तेरा गुर कमाल है पा, जिन्हें पटड़ी बने स्वर्ण स्वर्ण कराई हुई है।
3: वो गल्लां तां हुंदियां रहणगियां, घर नूं चलदे आ चाह पानी पीने, फिर भी वाट करके आए हाँ भाइया।
2: गल तां इन्नी कु है, तू शराब किस तरह छड़ती? आ गुर लैण आया अज ए पेंडा करके सवेरे सवेरे।
3: भाइया जी, परमात्मा ने हर बंदे नूं इक गुण जां हुनर तां दित्ता हुंदा, नशा इहो जिही कुलक्षणी चीज़ है भाई, उसे गुण नूं लुका के किसी मनुख उत्ते सवारी पै जांदा, ओहो उसदे गुण की झलक ही दिसण नहीं दिंदा, बाकी अपने सारे ही अवगुण उस मनुख विच भर भर दिखाउंदा रहिंदा। बस भाइया जी, जिस दिन तुसी अपने अंदरले उस दैवी गुण जां हुनर नूं ओले होया वेख लैंदे हो, तुहाडे अंदर सोफी होण दे हिले शुरू हो जांदे ने। तुहाडे वल्लों अज सवेरे निर्णय काल जे अपने पिंड तो पैदल ही जलनपुर आ जाना दसदा है कि तुहानू अपने लुके हुए दैवी गुण दे दिनारे हो गए ने। गल्लां गल्लां विच ही आपां घर भी पहुँच गए हाँ। बीबी दर खोल, नाले वेख कौन आया।
4: पछाण तां मैं लिया करमप्रीत, अज मड़ासा जिहा कोई मारिया होया, किसे तो चोरी आया है।
2: सत श्री अकाल बीबी, तुसी सही किया, मैं अपने आप तो ही चोरी आया इस पिंड च ते इस घर च भी।
4: चंगा तुसी बह के गल्लां बातां करो, मैं तुहाडे लई चाह बना के लियांगी।
3: भाइया तू किसे दे कहन ते या किसे वल्लों मजबूर करन ते नशा तां नहीं छड्ड रहा?
2: नहीं नहीं, किसे दे कहन ते नशा कित्थे छड्डदे बंदा, ये तां अंदरों ही आवाज आउंदी है सुन सियां।
3: बस भाइया, कोई नशा छड्डिया भी अंदरली आवाज सुन के ही जांदा।
4: मैनू लगदे भी करमप्रीत तू शाह वेला करके नहीं आया होएंगा, मैं चाह नाल ही दो दो परौंठे ला लियांनी आ। आटा गुन्निया पिया है, चेर नहीं लगना बाला।
2: नहीं नहीं, शाह वेला तां हले अटके सही, चाह ही पी लवांगे, क्यों ठीक है ना सुन सियां?
3: जिद्दा तुहाडा चित कहे भैया जी।
2: तो फिर अज अगे वांगू सोला नहीं मारेगा मैनू?
3: तुहाडा दिल करदा तां तुसी फिर चाह पई रहण दिओ, मैं दारू लिया दिना, पर शर्त यह है बई तुहानू कल्लिआं नूं ही पीनी पऊ, मैनू ना कहो।
2: ना कल्ले ने तां मैं कदे भी नहीं पीनी।
3: फिर तुहाडी मर्जी भाईआ जी, गल इह है तुहाडे विच ना कहण दी ताकत होनी चाहीदी है, नशई बंदे अंदर इह ताकत ही नहीं रहिंदी, बस रता को दलेरी फड़नी पैंदी है भाईआ जी। नशे बगैर कुछ समय की तंगी जरूर हुंदी है, बंदा मरदा नहीं, ये तंगी भी दो चार दिनों की रहिंदी है, फिर नींद भी आने लग पैंदी है ते भुख भी इन्नी लगन लग जाऊ कि लकड़ा भी खा जान दा दिल करदा।
2: खुश रह स्वर्ण सिंह, इहदा मतलब मैं अज सवेरे उठण सार इत्थे तेरे कोल आके सही ही कीता। चल हुण ऐ कर, इस तों पहलां कि वह मैनू फसलां च टोलदे फिरन, मैनू पिंड छड्ड आ, ते मैं भी हुण तों ही सारे नशे छड्ड दिंदा।

0: याद करदे हैं, एक बार मिलता लै वो पुराना हिसाब किताब करना है। चल पै। अच्छा केड़े डॉक्टर ने तेनू डराया, डॉक्टर सिंह या डॉक्टर के? ए गल तां नहीं कह सकते। ओए नशा छड़ाऊ केंद्र वाला डॉक्टर सिंह तो मैनू रोज़ मिलता, उसे नहीं तो तेरे चालिया बारे मैनू दस्या।
1: ओए आ वी करमिया, की गल है बे बूटिया, तेनू सोचना नहीं सी चाहिए भाई? जेड़ा माली इन्नी मेहनत नाल कोई बूटा लाउंदा है, उहदी सांभ संभाल करता है, उहनू जदों भी चाहे वढ़ के भी सिट सकदा, उहदियां जड़ां पट के सूर जल नू भी कर सकदा। एक बार सोच ला, इन्नी लंबी गैर हाजिरी कालीए ने किसे करिंदे दी अज तक टॉलरेट नहीं कीती।
2: मैं सारे ही नशे छड्डते कालिया साहब, सामने दीदी मौत तो डर लगता है।
1: अच्छा हाँ गल तो सही आखदा करमिया, इस बूटी नाल तो तू शायद इन्नी छेती ना भी मरे, पर इस जंतर नाल तां मैं तैनू हुणे सदा दी नींद सुला सकदा। देखदा वो तू समझदा की हो, साडा हिसाब किताब कौन निबेड़ू? कीते हुए करार मुताबक नवे बूटे कौन लाऊगा? ओए
3: बचाओ, कोई बचाओ मेरे पापा नु मारे, बचाओ कोई बचाओ। हाय नी मत नी नरेंद्र, होना ता पन सिटिया कर मेनू कसुना नाल। हाय करमिया तू तगड़ा हो, असी आ गईयां असी खड़क ते तगड़ा हो, तू पुत्र तगड़ा हो।
0: कालिया साहब कुड़ी ने पुलिस नु फोन कर दिता लगदा, आपां इहनू कार च सिट के भज चलीए।
4: हाँ तो इन्होंने करमे ने चुक के कार में सुट लिया लगता, करमा ही हाँ मैं पछाण लिया। हाँ तो मोनू आ मुंदरा वाला करमे नाल हथों पाई हो ही जाता, वो दौड़ो वे दौड़ो घेर लाओ जान ना दियो। कार इदा ही रुकू, मैं अपना सैकल कार अगे छड़दा।
1: ये भूपी का प्यो तो नहीं हैगा? मैं तेनू टेलर का लिहाज करके छड़ रहा, जे कोई होर हुंदा गोली हुन पुड़पुड़ी च लंघी होनी सी, परे हो जा।
4: जानदा होएगा मैनू, पहला ये दस भी करमे नू क्यों चुकी दी जाने हो?
5: इन्हां दोवां दी बाह पिछले पासे बन के इन्हां दी तलाशी लो। मैं तां खन्ने नू चलिया सी कि सरूप सिंह दी घरवाली दा फोन आ गया, ये तां मैनू उही लगदे आ जिन्हां दा झिड़ी च काफी आउणा जाणा रहता है। क्या कहते हैं
4: मेजर साहब? इन्हां तों आ पिस्तौल ते कुछ नशे दीआं पुड़ियां ते आ इक छुरा मिलिया।
5: रोटा खा लिया हरामिया, ओए तू खा गया साडे काकू नू, हुण मैं नहीं छड्डना तुहानू दुआड़ू। फड़ लो यार, फड़ लो बहू नू, जे मुलजमां नू कुछ हो गया सारा कसूर अपने पिंड सर पै जाना।
6: विचो माजरा की है, पासे हो जाओ सर जाने, पासे हो। क्यों बने हुए है? कानून हच लैण दा हक किने दिता तुहानू?
7: ओजे जनाब ए मौत दे व्यापारी आ महाराज, ये साडे इस मुंडे नू किडनैप करके लै चलने सी, आ साडे नगर ने बन्ने आ जी थोनू फड़ाउण खातर, नहीं तो ये भज चले सी।
6: तू कौन है वधू बक बक करी जाना है? कोई सरपंच पंच या नंबरदार नहीं है इस पिंड दा?
8: आ मेजर साहब हैगे आ जी, आ देखो पिंड दे सरपंच है, थानू फोन इन्हां ने तां कीता जी।
5: थानेदार साहब आ हैगे ने नशे दियां 13 पुड़ियां, एक डैगर एक आटोमैटिक पिस्टल जो इन्हां तों बरामद होए आ, आ इन्हां दी डिटेल।
6: तां तुसीं मैनूं इस कागज उत्ते साइन करन दी कमान दे रहे हो?
5: कमान नहीं थानेदार साहब, तुहाडी ड्यूटी ही याद कराई है।
6: तुसीं कौन हुंदे हो मैनूं मेरी ड्यूटी याद करवाउण वाले?
5: मैं इस पिंड दा चुने हां सरपंच हाँ, पर उस तों पहलां मैं इंडियन आर्मी दा रिस्पोंसिबल ते रिटायर्ड मेजर वी हाँ।
6: रह हो गए कदी मेजर, हुण तां इक पिंड दे सरपंच ही हो ना, असीं तफ्तीश करांगे, हो सकदा तुसीं इह सारा समान इन्हां दोहां दे सिर जबरी मार रहे होवो, बाकी सब तां लैबोरेटरी दसूगी।
5: इस तरह दीआं गल्लां करके तुसीं सिद्धे ही इन्हां तस्करां दे हक च भुगत रहे हो ते सारे पिंड दे लोकां नूं झूठे दस रहे हो।

0: मीडियम वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। तुहानू याद करवा दिए कि राती 9:30 सुनोगे पंजाबी नाटक पक्षी दी हवा। नाटक दे लेखक ने चमन अरोड़ा। ते हुण तों कुछ ही पलां विच यानी 7:30 सुनोगे पंजाबी खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे साल 2026 की 66 उगिया शख्सियतों नूं पद्म पुरस्कार प्रदान किए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रीख्या विच वार वार आ रही खामियां ते चिंता प्रगट करदिआं कहा कि यह दुख की गल है कि नैशनल टैसटिंग एजेंसी ने पिछले पेपर लीक तो कोई सबक नहीं सीखिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनोरंजन ते मेहमान नवाजी संस्थाओं विच बाल मजदूरी ते सख्त पाबंदी लाने की मांग करने वाली एक जनहित पटीशन ते केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी किया है। सरकार देश विच पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू सप्लाई यकीनी बनाने लई हर संभव कोशिश कर रही है। ते पंजाब विच नगर निगमां नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं पाल के होण वालीआं चोणां लई सब प्रबंध मुकम्मल ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे नागरिक सन्मान समारोह विच साल 2026 लई 66 उगियां शख्सियतां नूं पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इन्हां विचों 2 शख्सियतां नूं पद्म विभूषण 6 नूं पद्म भूषण अते 58 नूं पद्म श्री नाल सन्मानित किया गया। प्रसिद्ध फिल्म अदाकार धर्मिंदर सिंह देओल नूं कला अते उन्हां दे योगदान लई मरण उपरंत पद्म विभूषण नाल सन्मानित किया गया। उन्हां दी पत्नी अते लोक सभा मैंबर हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार हासिल किया। उत्तराखंड के साबक मुख्यमंत्री अते महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी डॉक्टर आर गणेश उदय सुरेश कुमार कोटक अते डॉक्टर कलीपट्टी रामास्वामी पलाई स्वामी नूं पद्म भूषण नाल सन्मानित किया गया। पद्म श्री नाल सन्मानित कीतियां गईयां उगियां शख्सियतां विच भारतीय महिला क्रिकेट टीम दी कप्तान हरमनप्रीत कौर, तगाराम बील, रति लाल मोहन लाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव अते कुमार बोस शामिल ने। इस समारोह दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत अते HD कुमार सामी समेत कई होर पतवंते भी मौजूद सन। साल 2026 लई राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारां नूं प्रदान करन दी प्रवानगी दित्ती सी। इन्हां विच 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण अते 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल ने। बाकी पद्म पुरस्कार जेतुआं नूं दूजे गेड़ विच होण वाले एक समारोह विच सन्मानित किया जाएगा। इन्हां पुरस्कारां दा ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर किया जाता है। यह वकारी नागरिक सन्मान कला, समाज सेवा, जनतक मामलों, विज्ञान ते इंजीनियरिंग, व्यापार अते उद्योग, दवाई, साहित्य अते सिक्ख्या, खेडां ते सिविल सेवा के खेत्रां विच विलक्षण योगदान लई दित्ते जांदे ने। सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रीख्या विच वार वार आ रही खामियां ते चिंता प्रगट करदिआं कहा कि दुख की गल है कि नैशनल टैसटिंग एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक तो कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस PS नरसिम्हा अते आलोक अराधे दे बेंच ने NTA दी थां कोई होर मजबूत अते खुद मुख्तियार संस्था बनाउण दी मांग करन वालियां पटीशनां ते केंद्र सरकार, नैशनल टैसटिंग एजेंसी अते CBI तों जवाब मंगिआ है। अदालत ने NTA नूं वीरवार तक एक हलफनामा दायर करन दा निर्देश दित्ता जिस विच पुछया गया कि इसने एजेंसी दे कामकाज नूं बेहतर बनाउण लई साबक ISRO मुखी K राधाकृष्णन दी अगवाई वाली कमेटी वल्लों पिछले साल कीतियां गईयां सिफारशां नूं किस हद तक लागू कीता है। पटीशनां विच इल्जाम लाया गया कि वार वार पेपर लीक होण नाल 22 लाख तों वध विद्यार्थियों के अधिकार प्रभावित होए ने। पटीशनां विच भविख दीआं प्रीख्यावां की निगरानी लई सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगवाई हेठ एक उच्च पदरी निगरानी कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने पुणे की फिजिक्स की लैक्चरर मनीषा संजय हवालदार को नीट UG पेपर लीक मामले में 6 दिन की CBI हिरासत में भेज दिता है। विशेष जज अजय गुप्ता ने मुलजम तो हिरासत में पूछगिछ की मांग करने वाली CBI की पटीशन मंजूर कर लिया। हवलदार 22 मई को गिरफ्तार किया गया से ट्रांजिट रिमांड से अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मनोरंजन अते मेहमान नवाजी संस्थावां विच बाल मजदूरी ते सख्त पाबंदी लाने की मांग करने वाली एक जनहित पटीशन ते केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अधिकारां लई काम करने वाले एक समूह की बेनती का नोटिस लिया है। पटीशनकर्ता ने केंद्र सरकार नूं 18 साल तो घट उम्र के बच्चों ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा अते सैलून विच काम कर

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਮਿਡਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਲੋ ਹੁਣ ਵਿਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਾਰਤਾ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜਪਿੰਦਰ ਕੌਰ।
2: ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਤਿਥੀ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ या महान व्यक्ति की याद दिलाती है। आज 25 मई एक ऐसे भारतीय क्रांतिकारी की जन्म तिथि है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर क्रांति एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बात कर रही हूँ रास बिहारी बोस की। उन्होंने न सिर्फ देश में रहते हुए बल्कि विदेश में भी रहकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का बड़ी समझदारी से संचालन किया और ताउम्र भारत को आज़ाद करवाने का प्रयास करते रहे। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 में बंगाल के वर्धमान जिले में सुबलदाह गांव में हुआ। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी बोस तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। जब बालक रास बिहारी मात्र 3 वर्ष के थे तो उनकी माताजी का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मामी ने किया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चंदन नगर में हुई जहां उनके पिता विनोद विहारी कार्यरत थे। आगे की शिक्षा उन्होंने चंदन नगर के ड्यूप्लेक्स कॉलेज से प्राप्त की। चंदन नगर उन दिनों फ्रांसीसी कब्जे में था। अपने शिक्षक चारू चंद से उन्हें क्रांति की प्रेरणा मिली। रास बिहारी बाल्यकाल से ही देश की आज़ादी के बारे में सोचते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। रास बिहारी ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय तक हेड क्लर्क के पद पर कार्य किया। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वे क्रांतिकारी गतिविधियों से पहली बार जुड़े। इस दौरान उन्होंने अरबिंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की साजिश को उजागर करने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे उनका परिचय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सक्रिय क्रांतिकारियों से हुआ। दिसंबर 1911 में जब भारत के वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी

दिल्ली के चांदनी चौक में निकाली जा रही थी, तब होर्डिंग की बग्गी पर बम फेंका गया, जिसमें वे केवल जख्मी हुए। बम फेंकने वाले युगांतर दल के सदस्य को पकड़ लिया गया, पर बम फेंकने की योजना मुख्य रूप से रास बिहारी बोस की थी। इस घटना के तुरंत बाद वे रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए और अगले दिन कार्यालय में इस तरह काम करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इतना ही नहीं, अंग्रेजी प्रशासन को उन पर शक ना हो, इसलिए उन्होंने देहरादून के नागरिकों की एक सभा बुलाई और वॉयसराय पर हुए हमले की निंदा भी की। सन 1913 में बंगाल बाढ़ राहत कार्य के दौरान रास बिहारी जतिन मुखर्जी से मिले, जिन्होंने उनमें भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का नया जोश भर दिया। रास बिहारी बोस ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की योजना बनाई। फरवरी 1915 में अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सेना में घुसपैठ कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके क्रांतिकारी कार्यों का प्रमुख केंद्र वाराणसी था, जहां से उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन किया। उस समय इन क्रांतिकारियों ने सोचा कि विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों के अधिकतर सैनिक देश के बाहर गए हुए थे, अतः बचे सैनिकों को आसानी से हराया जा सकता था। बेशक उनकी यह कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का यह पहला व्यापक और विशाल आंदोलन था। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस रास बिहारी के पीछे लग गई, जिसके कारण वे जून 1915 में जापान चले गए। वहां के पैन एशियाई समूहों से उन्हें समर्थन मिला। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए जापानी सरकार पर दबाव बनाए रखा। बोस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बार अपनी पहचान व निवास स्थान बदले। जापान में उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता का कार्य किया। वहां पर उन्होंने न्यू एशिया नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला। उन्होंने जापानी भाषा भी सीख ली और उस भाषा में 16 पुस्तकें लिखीं। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का भी अनुवाद जापानी भाषा में किया। फिर उन्होंने प्रसिद्ध समस्त एशियाई समर्थक सोमा आइजो की पुत्री टोशिको सोमा से विवाह कर लिया और सन 1923 में जापानी नागरिकता हासिल कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने जापानी अधिकारियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। जून 1942 में उन्होंने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। लीग का उद्देश्य विदेश में रह रहे भारतीयों और मलाया तथा बर्मा में पकड़े गए युद्ध बंदियों को संगठित करके एक सेना बनाना था। इसी से आज़ाद हिंद फौज का जन्म हुआ। शुरू में रास बिहारी बोस ही इसके नेता थे, लेकिन वे जानते थे कि भारत को एकजुट करने के लिए एक ऐसा नेता चाहिए जिसका नाम पूरे देश में गूंजता हो। इसलिए उन्होंने 1943 में लीग का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और खुद उनके सलाहकार बन गए। यह त्याग दर्शाता है कि उनके लिए पद से बड़ा देश था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नाम से INA का पुनर्गठन किया। भारत के महान सपूत रास बिहारी बोस को क्रांतिकारी गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहने के कारण अनेकों बार जेल भी जाना पड़ा। इतनी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने के कारण उन्हें तपेदिक जैसी जानलेवा बीमारी ने आ घेरा, जिसकी वजह से उनका निधन 21 जनवरी 1945 में केवल 59

0: वर्ष की आयु में ही हो गया। जापान सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से अलंकृत किया। उनके सम्मान में जापानी सम्राट ने शाही रथ भेजकर उनका अंतिम संस्कार किया। 1959 में उनकी बेटी तेत्सु हिगुची उनकी अस्थियां भारत लाईं। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत के सच्चे सपूत के रूप में सम्मानित किया। रास बिहारी बोस एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक प्रख्यात लेखक भी थे। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं द विक्ट्री ऑफ यंग एशिया, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, सिलेक्टेड पेट्रियोटिक राइटिंग। जापानी भाषा में प्रकाशित पुस्तक आजिया नो मिजामे बहुत प्रसिद्ध है। इन सभी पुस्तकों में उनके क्रांतिकारी विचारों एवं गतिविधियों का वर्णन है। उन पर कई अन्य लेखकों ने भी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं अग्नि पुरुष रास बिहारी बोस, जिनके बंगाली लेखक पृथ्वीराज सेन थे, आज़ाद हिंद का समुराई सपना लेखक प्रसून राय, महान क्रांतिवीर रास बिहारी बोस लेखक स्वतंत्र कुमार। इतिहास के पन्नों में धूमिल हो चुके इस वीर सपूत की बात करने का मकसद है उनके त्याग और संघर्ष को याद रखते हुए हम भी उनसे प्रेरणा लें। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे रास बिहारी बोस जैसे कितने अनसुने नायकों का खून पसीना लगा है। आइए हम भी प्रण लें कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में इतने ईमानदार और समर्पित बने कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, गर हौसले बुलंद हों तो कोई बाधा रोक नहीं सकती, गर हौसले बुलंद हों तो कोई बाधा रोक नहीं सकती, कठिनाई कितनी भी भयानक हो वीरों को तोड़ नहीं सकती, वीरों को तोड़ नहीं सकती।
1: हुणे तुसी हिंदी वार्ता सुन रहे सी महान देशभक्त रास बिहारी बोस। वार्ताकार सन राजपिंदर कौर। मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। क्या दोस्तों प्रोग्राम लगे दोनों दोस्तों असी अपने भविख ते आप निर्माता है। असी अपना भविख आप बनाने हैं क्योंकि जिहड़ी साडी सोच है ते जिहड़े साडे काम है साडे कर्म ही साडी जिंदगी बनाउंदे ने। इसलिए हमेशा चंगा सोचो अते चंगा ही कहो। हमेशा वधिया काम मेहनत नाल करदे रहो। किसी तो डरन की कोई जरूरत नहीं होंदी क्योंकि डर ही साडी सब तो वड्डी कमजोरी है। इस करके डर नूं हमेशा दूर रखना चाहिए है क्योंकि जदों असी डर नूं दिलों कढ दिंदे आ तां हर मुश्किल आसान लगन लग पैंदी है। इस करके एक विचार नूं हमेशा अपनी जिंदगी विच याद रखो कि अपने लक्ष्य ते पूरा ध्यान दिओ। उस बारे सोचो, उसे लिए मेहनत करो, सफलता तुहानूं जरूर मिलेगी। ते जे कदी किसी गल ते दिल ते दिमाग च टकराव हो जाए तो कदी कदी दिल दी भी सुननी जरूरी है। दिल दी सुन लिया करो क्योंकि सच्चाई ते इंसानियत दी आवाज़ हमेशा सही रस्ता बखाउंदी है। और दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी असीं इहनां नूं अगे वधाउंदे हां ते अगला गीत तुहाडे लई आ रिहा है घायल फिल्म तों। इस गीत नूं गाया है पंकज उदास ते लता मंगेशकर ने।

0: आकाशवाणी जलंधर के प्रोग्राम जिंदगी हसीन है इस तरह ही जारी रहेगा एक सुनेहे तो बाद।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्हां ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउण दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: प्रोग्राम जिंदगी हसीना दे विच अगला गीत दिल फिल्म तो। इस गीत नु गाया अनुराधा पौडवाल ते उदित नारायण ने।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी पलाना स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: High international crude prices and
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर

0: की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
5: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines.

0: जून महीने के शुरू में ही मेरे नाभे की तहसील च तबादले का ऑर्डर आ गया, जिसलिए मैं अर्जी दिती हुई सी। मैं बड़ा खुश सी कि घर जा रहा, मैनू उस दिन दोपहर तो बाद रिलीव करता गया।
1: अच्छा।
0: कमरे में आके मैं अपना सामान वगैरह पैक करना शुरू कर, रिक्शा मैं नाल लेके आया सी।
1: अच्छा।
2: फिर आता ना कि हफड़ा दफड़ी पाई हुई है, टैची च कपड़े क्यों तुन्नी जाना है?
0: भाभी मेरे नापे अपने घर तबादले की अर्जी मंजूर हो गई है, कल उत्थे हाजिरी देनी है। मेरा साइकिल ते बिस्तरा इत्थे पिया है, मैं कुछ दिनों नू चार्ज दिन आवांगा ते तुहाडा बंदा किराया वगैरह देवांगा। चोपड़ा साहब नू मेरी नमस्ते कहना।
2: आए हाए, आ कोई तरीका है मकान खाली करन दा? ना किराया ना बिजली का बिल, हिसाब किते बिना ही चोरा वांग दौड़ गया। पता नहीं आउंदा भी है कि नहीं।

0: कौन है भाई? आ रही हैं। वे रतन तू कदों आया? 3 महीने बीत गए तेनू गया, असी तो तेरे आने की उम्मीद ही ला छड़ी सी।
1: पैरी बहना भाभी, बस दफ्तर तो छुट्टी हुण जाके मिली। पहला तहसील गया, चार्ज दिता, तो फिर हुण तुहाडा किराया वगैरह देने इधर दौड़िया शाम की।

0: वापस।
1: ना करे सब राजी खुशिया।
0: तुसी सुनाओ। हां सच तोशी वरी सब ठीक ने?
1: अहमद दा रिजल्ट आउंदिया ही तोशी दा व्याह हो गया। परमाई चिंतपुरनी दे नेड़े शांति स्वरूप ना दे पटवारी नाल पक्की नौकरी।
0: अच्छा मैं नहीं सोचा सी इना 3 महीने च इना कुछ बदल जाएगा। मेरे इत्थे आन दे मकसद च तोशी नूं मिलना भी शामिल सी।
1: वे रतन किथे गवाच गया?
0: ते तोशी दी मां?
1: ओ ता मकान वेच के अपने भरावां कोल हुशियारपुरी चली गई। कल्ली जान इत्थे ओदा सी भी कौन?
0: चंगा भाभी मैं हुण चलदा। मेरा साइकिल ते बिस्तरा गली च जिहड़ा सफाई वाला आंदा है ना उहनूं दे दिया जे। मैं किथे चलूं?

0: मन तो बड़ा दुखी होया हो तोशी दे व्याह दा सुन के।
1: हाँ मन नू ही उदासी लेके गड्डी च बैठा, बड़ा दिल करता है उस कुड़ी नू मिलन लई।
0: कुड़ी कुड़ी नहीं बुढ़ी कहो, बुढ़ी।
1: मेरे तो सबर च वही दोषी है जिन्हों मैं 50 साल पहला देखा सी। जे तू इतराज ना करे तो आप उसके घर वाले का पता पूछ के भरवाई मिलना आईए। छोटा जिहा पिंड है, पटवारी नू कौन नहीं जानता होएगा।
0: चलो देख लैने तुहाडी तोशी नू।
1: मेरी नहीं, शांति स्वरूप दी।
0: ठीक है, पहला किते कुछ खा पी लैने, सवेर दे भुखण पाने।
1: ओ सामने ढाबा है। हाँ। उत्थे चलदे।
0: ठीक है। रोटी तो स्वाद सी, कईयां ने तो मिर्चा ही ठोकिया होंदिया ने। ना हुण चाह ना पी लिए,
1: देर हो जाऊगी। मेरा ख्याल है बिल देइए ते चलिए।
0: चाह तोशी दे घर पी लांगे। जे पता मिल गया ता।
2: ओ मुंडिया जी, जूठे भांडे चक, मेज ते कपड़ा मार।
3: अच्छा जी,
1: आ लो जी पैसे।
2: ठीक है जी।
1: भाई साहब, तुसी किसे शांति स्वरूप ना दे बंदे नू जानदे हो जेड़ा परवाई पटवारी लगा रहा?
2: लो जनाब, उन्हां नू कौन नहीं जानदा। इत्थों दे जंपल रिहायश तो उन्हां दी प्यो दादे तो इत्थे ही रही। बड़ी तरक्की कीती उन्हां, कांगड़े तो बतौर नैब तहसीलदार रिटायर होए। पत्नी उन्हां दी इत्थों दे सरकारी हाई स्कूल दी प्रिंसीपल सी, वो भी रिटायर हो चुकी है। सारी सर्विस इत्थों दी, दोनों ही बड़े मेहनती, बड़े मिलनसार।
1: घर का पता दस सकते हो उन्हां दा?
2: लो उन्हां दा घर किन्नू नहीं पता, छोटा जिहा तां कस्बा है। सुनो, सीधे जाके स्कूल आऊगा, खब्बे हाथ पहली गली ते चौथा मकान।
0: शुक्रिया भाई साहब।
1: घर तो यही लगता है। आ देखी नेम प्लेट ते किहदे नां ने, मैं अपनी ऐनक लियानी भुल गया।
0: ठाकुर शांति स्वरूप, रिटायर्ड नायब तहसीलदार, प्रिंसिपल संतोष ठाकुर, रिटायर्ड। घर ते पक्का यही है।
1: बैल दवा
0: ना सहेली तुहाडी, मैं क्यों बैल दवावा।
1: अच्छा मैं घंटी बजा दिना।
4: आ रही हां, खोल दिया। तुसी मेरा मतलब
1: जी जी मैं

0: लगता है उसने लुधियाना
1: लुधियाना
0: छोड़
1: छोड़
0: दिया
1: दिया
0: है।
1: हो।
0: चंद और अशार हैं कि रंज रखना न जबां पर कोई शिकवा रखना, रंज रखना न जबां पर कोई शिकवा
1: शिकवा
0: रखना,
1: रखना,
0: अब के मिलना तो मोहब्बत का सलीका रखना,
1: बहुत
0: क्या
1: क्या बात।
0: अब के
1: जी
0: मिलना तो मोहब्बत
1: जी
0: का सलीका रखना। हाय वो दिन के बुजुर्गों की वो झूठी खांसी,
1: हाँ,
0: हाय वो दिन के बुजुर्गों की वो झूठी खांसी, और फिर औरतों का सर पे दुपट्टा रखना।
1: बहुत खूब,
0: हाय
1: वाह
0: वो दिन के बुजुर्गों की वो झूठी
1: वाह
0: खांसी, और फिर औरतों का सर पे दुपट्टा रखना। आपको इल्म कहाँ कितना कठिन होता है, आपको इल्म कहाँ कितना कठिन होता है, सख्त मायूसी में हंसता हुआ चेहरा रखना।
1: बहुत
0: वाह
1: खूब
0: जी,
1: बहुत खूब, बहुत
0: आपको
1: बढ़िया,
0: इल्म कहाँ कितना कठिन होता है, सख्त मायूसी में हंसता हुआ चेहरा रखना।
1: वाह जी
0: जी
1: वाह,
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
1: क्या
0: बहुत
1: कहें,
0: अच्छा,
1: बहुत
0: बहुत
1: वाह वाह,
0: अच्छे।
1: बहुत
0: अमन जोशी अजीज साहब आपको अपने कलाम से नवाज रहे थे, बहुत ही अच्छा। अब इनके बाद मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब कमल नयन शर्मा जी से कि वो भी अपने कलाम से नवाजें।
1: सामाइन एक गजल देखिएगा। झूठ की नींव पे रिश्तों की इमारत जैसे, झूठ की नींव पे रिश्तों की इमारत जैसे, और मक्कारी में हासिल हो महारत जैसे।
0: वाह
1: क्या बात
0: वाह,
1: है, क्या बात
0: वाह
1: है।
0: जी
1: झूठ
0: वाह,
1: की नींव पे
0: वाह वाह,
1: रिश्तों की इमारत जैसे, और मक्कारी में हासिल हो महारत जैसे, खून पे वहम था हमको बहुत गाढ़ा है।
0: क्या
1: खून
0: जी,
1: पे वहम
0: वाह
1: था
0: जी,
1: हमको
0: वाह
1: बहुत गाढ़ा है,
0: जी,
1: अब तो बन बैठा है पानी की इबारत जैसे, अब
0: वाह
1: तो बन
0: वाह,
1: बैठा है पानी की इबारत जैसे,
0: वाह,
1: और जिसके बोलों से मोहब्बत का हुमा होता है, जिसके बोलों से मोहब्बत का हुमा होता है, उसके चेहरे से झलकती है हिकारत जैसे, उसके चेहरे से
0: वाह
1: झलकती
0: वाह
1: है हिकारत
0: वाह
1: जैसे। और शेर अर्ज है कि हम तो झूठ को भी सच की तरह कहते हैं, हम तो झूठ
0: झूठ को
1: को भी
0: भी
1: सच
0: सच
1: की
0: की तरह
1: तरह
0: कहते
1: कहते हैं,
0: हैं।
1: हमको रिश्तों ने सिखाई हो सियासत जैसे,
0: क्या कहें,
1: हमको
0: वाह
1: रिश्तों
0: वाह
1: ने
0: वाह,
1: सिखाई हो सियासत
0: वाह
1: जैसे।
0: वाह वाह,
1: और देखिएगा, सहने दिल में कई बोलियां लगती हैं कमल, सहने दिल में कई बोलियां लगती हैं कमल, रोज जज्बात की होती हो तिजारत जैसे, रोज जज्बात की होती हो तिजारत जैसे।
0: वाह
1: और
0: वाह
1: एक
0: वाह
1: गजल
0: जी,
1: और
0: हाँ जी,
1: देखिएगा
0: इरशाद,
1: कि शायरी का शऊर है बाबा, शायरी का शऊर है बाबा, इसमें कैसा गुरूर है बाबा,
0: बहुत अच्छे,
1: इसमें कैसा गुरूर है बाबा, दूर है जो वो पास है मेरे, दूर है जो वो पास है मेरे, पास है वो जो दूर है बाबा,
0: क्या बात,
1: पास
0: वाह,
1: है जो वो दूर है बाबा। और तुम सजाओगे पूरी दुनिया को, तुम सजाओगे पूरी दुनिया को, ये भी कैसा फितूर है
0: हाँ
1: बाबा,
0: हाँ
1: ये भी
0: वाह,
1: कैसा
0: अच्छा
1: फितूर है
0: शेर,
1: बाबा।
0: वाह जी,
1: और
0: वाह वाह,
1: शेर देखिएगा कि हाँ मैं टूटा हूँ अपने अंदर से,
0: वाह,
1: हाँ मैं टूटा हूँ अपने अंदर से, फिर भी चेहरे पे नूर
0: नूर
1: है
0: है
1: बाबा,
0: बाबा,
1: फिर भी
0: वाह,
1: चेहरे पे नूर
0: अच्छा,
1: है
0: बहुत
1: बाबा।
0: बहुत,
1: और हमने माना कि वो भी इंसान है, हमने माना कि वो भी इंसान है, और कोई कसूर है बाबा,
0: आए, क्या
1: और
0: बात
1: कोई
0: है, बहुत
1: कसूर
0: अच्छा
1: है
0: शेर है,
1: बाबा।
0: वाह
1: और
0: वाह वाह
1: आज फिर भीड़ सूनी गलियों में,
0: जी,
1: आज फिर भीड़ सूनी गलियों में, माजरा कुछ तो जरूर है बाबा, माजरा कुछ तो जरूर है बाबा। और होश आए तो होश रहता नहीं, होश आए तो
0: होश
1: होश
0: रहे, वाह
1: रहता नहीं, जाने कैसा सुरूर है बाबा,
0: क्या
1: जाने
0: बात, वाह,
1: कैसा सुरूर है
0: सुरूर,
1: बाबा।
0: वाह वाह,
1: और क्या सितम है दरी ही याद नहीं, क्या सितम है दरी ही याद नहीं, वो जो कुर्सी में चूर है बाबा,
0: क्या
1: वो जो
0: बात,
1: कुर्सी में चूर है बाबा।
0: बहुत
1: धन्यवाद,
0: अच्छा,
1: वाह
0: वाह जी वाह,
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: अच्छा,
0: शुक्रिया जनाब। ये थे कमल नयन शर्मा जी, जिनकी शायरी से आप महसूस हो रहे थे, बहुत अच्छा कलाम पेश किया। तो इनके बाद मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा रेनू नैयर साहिबा से, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े मुशायरों में अपना कलाम पढ़कर दादो तहसीन हासिल कर चुकी हैं, नेशनल लेवल पर भी और बैनुल

0: हाँ वो उर्दू जुबान है।
1: क्या
0: बहुत
1: बात,
0: खूब,
1: सही
0: बहुत खूब,
1: बोल,
0: बहुत
1: सही
0: बढ़िया,
1: बात।
0: बहुत बढ़िया। मुकर्रर, मुकर्रर साहब।
1: होती हर एक जुबान में है शायरी, मगर शेरो सुखन की आबरू उर्दू जुबान
0: बहुत
1: है।
0: खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारा,
1: एक
0: बहुत
1: शेर
0: प्यारा।
1: और देखिए। हमने दिल की बात छुपा कर लिखी थी,
0: हाँ,
1: हमने दिल
0: दिल
1: की
0: की
1: बात
0: बात
1: छुपा
0: छुपा
1: कर
0: कर
1: लिखी
0: लिखी
1: थी,
0: थी।
1: वो खत को अखबार बनाए फिरते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत
1: क्या कहते
0: खूब,
1: हैं,
0: बहुत
1: वाह वाह
0: बढ़िया, क्या
1: वाह,
0: बात, क्या बात, क्या
1: शुक्रिया
0: बात है।
1: शुक्रिया जनाब। मैं अपने आप को पाता हूँ रूबरू अपने,
0: जी जी जी
1: मैं अपने आप को पाता हूँ रूबरू
0: रू
1: अपने,
0: अपने।
1: तुम्हारी याद भी अब आईना सी लगती है,
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत
1: तुम्हारी
0: बढ़िया,
1: याद भी अब आईना सी
0: आईना सी
1: लगती
0: लगती
1: है।
0: है।
1: इंसान में खुलूस की बिल्कुल कमी ना हो,
0: हाँ,
1: इंसान में खुलूस की
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल कमी
0: कमी
1: ना
0: ना
1: हो,
0: हो।
1: वो आदमी ही क्या जिसे मिलकर खुशी ना हो।
0: आह, क्या
1: वाह
0: बात
1: खूब,
0: है,
1: वाह
0: वाह,
1: खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर,
1: शुक्रिया।
0: वाह।
1: अब एक गज़ल पेश करता हूँ,
0: जी
1: तरन्नम के साथ दो चार शेर आपको सुनाऊंगा। ये जो कंकर उबालता हूँ
0: जो
1: मैं,
0: कंकर उबालता हूं मैं।
1: ये जो कंकर उबालता हूँ मैं, ये जो कंकर उबालता हूँ मैं, भूखे बच्चों को
0: आए, बहुत
1: टालता
0: खूब,
1: हूँ
0: बहुत बढ़िया, क्या
1: मैं,
0: बात है,
1: भूखे बच्चों को टालता हूँ मैं,

0: में
1: कमाल।
0: भूखे बच्चों को टालता हूँ मैं। एक गजल की कुछ शेर और पेश करता
2: जी
0: हूँ।
2: जी
0: दिल

0: वो मोहब्बत से आशना ही नहीं, वो मोहब्बत से आशना ही नहीं जो समझता नहीं वफा क्या है। वो मोहब्बत से आशना ही नहीं जो समझता नहीं वफा क्या है।
1: बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पीठ पीछे बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, कोई पूछे उसे दगा क्या है, कोई पूछे उसे दगा क्या है। मुझको मुझ में पनाह मिलती नहीं, मुझको मुझ में पनाह मिलती नहीं, आज मुझको ये हो गया क्या है। हाले दिल जब भी गौर से जाना, हुआ मालूम के हुआ क्या है। राज पिन्हा है जो तेरे अंदर, वहशते दिल मुझे बता क्या है। मुबतला गम में है जहां सारा, ये तमाशा मेरे खुदा क्या है। जब बचा हादसों से मैं अनवार, तब ये जाना कि हर दुआ क्या है। दो तीन शेर और आपको सुनाऊंगा। करते नहीं है शुक्र ना रखते हैं वास्ता, करते नहीं है शुक्र ना रखते हैं वास्ता, मतलब निकाल लेते हैं बस बंदगी से हम, मतलब निकाल लेते हैं बस बंदगी से हम। दिल को हर एक जुनून से बचाया तमाम उम्र, दिल को हर एक जुनून से बचाया तमाम उम्र, तब जाके हम किनार हुए आग ही से हम,
1: आग ही से हम। बहुत खूब, बहुत खूब।
0: तब जाके हम किनार हुए आग ही से हम। लगती है कायनात खिलौना कोई हमें, लगती है कायनात खिलौना कोई हमें, गम से निभा लेते हैं जब खुश दिली से हम।
2: वाह,
1: बहुत खूब।
0: माना के शाद कर ना सकी ये कभी हमें, माना ये शाद कर ना सकी ये कभी हमें, बदजन नहीं हुए हैं कभी जिंदगी से हम। सौ तरह से जहां ने मिटाया हमें मगर, सौ तरह से जहां ने मिटाया हमें मगर, जिंदा रहे हैं अपनी ही जिंदा दिली से हम।
2: क्या कहने,
1: बहुत
2: वाह
1: खूब।
2: वाह।
0: अब मैं गुजारिश करूंगा अमन जोशी साहब से, दो तीन शेर आप अपने सुनाइए।
3: पेश करता हूँ कि वो मस्ती वो हंसी भोली सी सूरत पे वो बेफिक्री, वो मस्ती वो हंसी भोली सी सूरत पे वो बेफिक्री, खुदा की शक्ल बच्चों से जुदा हो ही नहीं सकती।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
3: खुदा की शक्ल बच्चों से जुदा हो ही नहीं सकती, और परिंदा रोज़ क्यों आ बैठता है मेरी चौखट पर, परिंदा रोज़ क्यों आ बैठता है मेरी चौखट पर, मेरे दरवाजे की लकड़ी यकीनन जानती होगी।
0: वाह वाह वाह वाह
3: परिंदा रोज़ क्यों आ
0: वाह
3: बैठता
0: वाह
3: है
0: वाह
3: मेरी
0: वाह,
3: चौखट पर,
0: बहुत अच्छे।
3: मेरे दरवाजे की लकड़ी यकीनन जानती होगी। कुछ और गज़ल से चंद अशआर हैं कि मसला तो समझ लिया कीजिए, मसला तो समझ लिया कीजिए, बाद में कोई मशवरा दीजिए,
1: बहुत खूब,
0: वाह वाह,
2: क्या बात है,
0: बहुत अच्छे,
3: बाद में कोई मशवरा
0: बहुत
3: दीजिए,
0: अच्छे।
3: आप सब पर यकीन करते हैं, आप सब पर यकीन करते हैं, ये मर्ज़ है कोई दवा लीजिए,
1: बहुत खूब,
2: क्या
1: वाह
2: बात
1: वाह,
2: है, वाह वाह।
3: ये मर्ज़ है कोई दवा लीजिए, और आपकी मीठी बातें काफ़ी हैं, आपकी मीठी बातें काफ़ी हैं, मेरा चाय का कप उठा लीजिए,
0: बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे,
3: आपकी मीठी बातें काफ़ी
0: बहुत अच्छे,
3: हैं,
0: बहुत अच्छे।
3: मेरा चाय का कप उठा लीजिए, आप शादीशुदा हैं और खुश भी, आप शादीशुदा हैं और खुश भी, आप मालिक का शुक्रिया कीजिए।
2: अरे वाह,
3: जी
0: शुक्रिया।
3: शुक्रिया।
0: अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब कमल एन शर्मा जी से, वो भी अपने कलाम से नवाजें।
1: देखो ये कैसे मंजर हैं, दिल में पलते कितने डर हैं, भैंस है उसकी जिसकी लाठी कुछ जुमले कितने पत्थर हैं, भैंस है उसकी जिसकी लाठी कुछ जुमले कितने पत्थर हैं, पेट भी तो है साथ ही उनके, पेट भी तो है साथ ही उनके, सामने झुकते जितने सर हैं, सब रस्ते पुरखार कमल जी, अब अपने आसान सफर हैं,
0: वाह
1: अब
0: वाह,
1: अपने
0: क्या
1: आसान सफर।
2: बात,
3: बहुत अच्छे।
0: अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा रेनू नैयर।

0: साहिबा से कि वो भी अपने चंद अशआर और हमें सुनाएं कुछ।
1: जी मैं एक गज़ल से दो चार शेर और
0: हाँ
1: पढ़
0: सुनाएं।
1: देती हूँ कि मतलब देखिए कि किसी मिट्टी की जानिब से के कूजा घर की जानिब से, किसी मिट्टी की जानिब से के कूजा घर की जानिब से, बहुत मुश्किल है बाहर का सफर अंदर
2: अंदर
1: की जानिब
2: से।
3: बहुत
2: अच्छे,
3: बहुत खूब,
0: वाह वाह,
1: तुम्हारे
2: बहुत अच्छे।
1: साथ कुछ पल और चलना चाहते थे हम,
2: वाह,
1: तुम्हारे साथ कुछ पल और चलना चाहते थे हम, सदाएं आ रही थी पर हमारे घर की जानिब से।
2: बहुत अच्छे,
3: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक शेर देखिए कि
0: बहुत
1: अगर तुम दोस्त हो तो दोस्ती का पास रख लेना, अगर तुम दोस्त हो तो दोस्ती का पास रख लेना, हजारों तन आएंगे जमाने भर की जानिब से।
2: बहुत अच्छे।
1: और आखिरी शेर के ये किस उम्मीद पर तुम छोड़कर दुनिया को बैठे हो, ये किस उम्मीद पर तुम छोड़कर दुनिया को बैठे हो, कभी आवाज आई है किसी पत्थर की जानिब से। बहुत शुक्रिया,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो तीन शेर मैं सुनाकर फिर प्रोग्राम खत्म करता हूँ। शबे तारीख में रिश्तों को बनाए रखिए, शबे तारीख में
1: रिश्तों को बनाए रखिए,
0: रिश्तों को बनाए रखिए, आंधियों में भी चिरागों को जलाए
3: रखिए। बहुत बढ़िया।
0: शुक्रिया। शबे तारीख में रिश्तों को बनाए रखिए, आंधियों में भी चिरागों को जलाए रखिए, लाख पतझड़ की हुकूमत हो तुम्हारे दिल पर, लाख पतझड़ की हुकूमत हो तुम्हारे दिल पर, अपने चेहरे पे बहारों को सजाए रखिए।
3: बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: शुक्रिया। जिंदगी चैन से कट जाए तमन्ना है अगर, जिंदगी चैन से कट जाए तमन्ना है अगर, गुजरे मौसम की खराशों को भुलाए रखिए।
1: क्या क्या कहने बाबा।
0: शुक्रिया। चल ना जाए कहीं नफरत की बला का जादू, चल ना पाए कहीं नफरत की बला का जादू, हर घड़ी प्यार के जज्बों को जगाए रखिए। चाहते हो कि ना हो ऐब तुम्हारे जाहिर, चाहते हो कि ना हो ऐब तुम्हारे जाहिर, दूसरों के भी तो ऐबों को छुपाए रखिए। शुक्रिया। कामयाबी की तमन्ना है जो अनवार तुम्हें, कामयाबी की तमन्ना है जो अनवार तुम्हें, अपने सीने में इरादों को छुपाए रखी है।
2: बहुत अच्छे।
0: मोहतरम सामीन, आज की महफिल मुशायरा में चार शोरा हजरात ने अपना कलाम पेश किया। उम्मीद है आप ने हमारे इस प्रोग्राम को महसूस किया होगा और लुत्फ़ानंदोज़ हुए होंगे। ऑल इंडिया रेडियो जलंधर हमेशा उर्दू के मुशायरे मनक़द करता रहता है, तो आज जो भी शोरा हजरात यहाँ स्टूडियो में पहुँचे, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन जोशी अजीज़ साहब, कमल नैन शर्मा जी, मोहतरमा रेनू नैयर साहिबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी हमारे बुलावे पर ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और हमें अपना बढ़िया कलाम पेश करेंगे। शुक्रिया।
4: हुणे तुसीं उर्दू मुशायरा सुन रहे सी। शायर इंसान डॉक्टर अनवार अहमद अंसारी, अमनदीप जोशी अजीज, रेणु नैयर ते कमल नयन शर्मा। मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दी पंजाब सेवा दा एह जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते हो। रात दे 10:30 बज चुके ने। लो हुण समात फरमाओ चंद गज़लां। सब तो पहला चित्रा सिंह ते जगजीत सिंह की आवाज़ एक गज़ल।

0: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:05 'ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर

0: विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास

0: इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala

0: जी, फेल कहिए के पास जिंदगी जड़ी है वो इन दोवां एंड्स दे विचकार। ये दोवें तो कहते नहीं ना कि जिवें इहदा सिरे ने दो, पर जिंदगी जड़ी है जी इन्हां दे विच भी चलती है। हालांकि गुरदास मान दी जिहड़ी लेखनी है वो अक्सर ऐसी गल अपने गीतां दे विच कह जांदे नहीं। ते स्वागत कर लिए व्हाट्सएप तो जुड़े ने जी साढ़े नाल पिंड शाहपुर जाजन तहसील डेरा बाबा नानक तो राजवंत सिंह रंधावा, निशान सिंह ते फौजी अमरीक पेंटर जुड़े हुए ने। स्वागत तुहाडा। सुरेंद्र संधु जी, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतिशा संधु ते मैक्स जुड़े ने जी गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवां शहर तो। तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। सरहंदी बाज़ार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा, कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, ज्योति, सजनी जुड़े ने जी। तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत। ते बड़ा प्यारा सुनेहा भेज रहे ने जी छाजली, पिंड छाजली तो ज़िला संगरूर तो सुखबीर सिंह जी, कोमलप्रीत कौर ते रोशनप्रीत सिंह जुड़े ने। तुहाडा भी जी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच शामिल होए हो। चौधरी जुल्फिकार अली चक लाले के बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान तो जुड़े ने जी, इन्हां दा भी स्वागत करदा हाँ प्रोग्राम दे विच। निघा स्वागत तुहाडा। ते फोन कॉलर जुड़ चुके ने, करदे आं उन्हां नाल वी गल। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम स्वागत।
1: थैंक यू जी। सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल मनजीत जी, की हाल चाल?
1: बस ठीक है जी, तुसीं अपना सुनाओ
0: जी। बहुत देर तुहाडी एबसेंट रह लग गई है जी इत्थे। अच्छा जी, अच्छा ठीक है ठीक है। मतलब फिर असीं ठीक है, चलो फिर तुहानूं फाइन नहीं पावांगे असीं, फिर साडी गलती है, असीं फाइन नहीं लावांगे, है ना जी। जी चलो जी, दसो केड़ा गाना सुनाइए फिर अज।
1: अज
0: गेड़ियां शेड़ियां। ठीक है जी, लो सुनदे आं फिर गुरदास मान ते राणी रणदीप दा गाया

हर भजन मान ते रानी रंदीप दी आवाज़ च सुने जे गीत ते अगली फरमाइश सानू आई है जी कन्वर गरेवाल दी आवाज़ च कोई भी गीत सुनन दी ते फरमाइश सानू आई है जी व्हाट्सएप दे जरिए। सो अगला गीत सुना के कन्वर गरेवाल दी आवाज़ दे विच ते फरमाइश आई कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक ते वंश बत्ता जुड़े ने प्रोग्राम दे विच ते सईद मसरूर साइना शाइना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम अदीप हसन भी जुड़े ने जी पिन कुमार हेड़ा सहारनपुर तो और बहुत प्यार भरिया अदब नाल भरिया होया आदाब सानू भेज रहे ने जी आदाब तुहानू बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल भी ते आदाब भी शुक्रिया प्रोग्राम दे विच शामिल होण दे लई। ते कृष्ण लाल राजू दीपू शीतल शारदा विवान गोपाल पिंड मखनपुर बिशना जम्मू तो सुनेहा भेज रहे ने सुन रहे जी प्रोग्राम तुहाडा भी कर रहे हैं स्वागत प्रोग्राम दे विच ते जय माता दी भी बोल रहे ने जी बिल्कुल जय माता दी ते शुक्रिया प्रोग्राम दे विच शामिल होने दे लई। ते नथुराम शर्मा ललित शर्मा इंदराज शर्मा सुरेश शर्मा भी जुड़े ने जी मंडी हरजी राम मलोड़ तो थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच तुसी शामिल हो रहे हो। लो जी अगला गीत सुन रहे हैं कन्वर गरेवाल दी आवाज़ दे विच।

प्रोग्राम चल रहा सुगात गरी फिर तो सबदानी का स्वागत करता हाँ। प्यारे जी गीत की फरमाइश आई रही सदाबहार गीत है मित्रों का चलिया टरक तो फरमाइश आई रही साढ़े कोल मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल तिमान जी श्रीमती कृष्णा तिमान राहुल तिमान कोमल तिमान शुभम तिमान प्रियंका तिमान आंचल परव चिराग रजत विमान राजेश ते सारा तिमान परिवार प्यार प्री नमस्कार भी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच तुसी शामिल होयो जी। सुनते हैं तुहाडी फरमाइश दे उते सुरेंद्र कौर ते रमेश रंगीला दी आवाज़ च ये गीत

तेरे नाल दो कड़िया ने असाने हसके जी पर चौना ओ प्यार दिया दो गल्ला करके वेला लिये तक नी चुप करके चढ़ जा मित्रां दा चलिया ट्रक नी।

सुरमा पा लिया गोरी ने ओहदे पहले ही नैण ने छिले गीत सुने जी राज बराड़ की आवाज़ च सुरमा। साढ़े अगले फोन कॉलर जुड़े ने जी प्रोग्राम दे विच उन्हां दा वी निघा स्वागत करते हैं। तो नाल ही जिला रोपड़ पिंड डुगरी तो राजा मिस्त्री तो साथी भी सुन रहे ने प्रोग्राम, उन्हां दा भी जी स्वागत करते हैं प्रोग्राम दे विच। ते पिंड फरासी हज़ार तो राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी भी जुड़े हुए हैं जी इन्हों का भी निघा स्वागत प्रोग्राम दे विच। स्वागत करते हैं अपने फोन कॉलर का जी, बहुत बहुत स्वागत थोड़ा जी। थोड़ी फोन लाइन मिल गई है जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही थोड़े तक? लगता जी उन्हों की आवाज़ या मेरी आवाज़ उन्हें तक पहुँच नहीं पा रही, तो फोन लाइन पर जी होल्ड पर है जी। एक बार फिर आवाज़ ला लें उन्होंने जी, कि मेरी आवाज़ पहुँच रही जी थोड़े तक? नहीं जी, लगता जी इन्हों की आवाज़ जी है कोई शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो लो जी कर रहे हैं जी अगले गीत की सांझ थोड़े नाल।

0: बिल्कुल, तुहाड़ी फरमाइश एक फोन कॉल दी फरमाइश तो बाद पूरी कर रहे हैं जी। माफ़ करना कुछ देरी हुई तुहाडा सुनेहा व्हाट्सएप दे जरिए पढ़न दे विच, पर सुनते हैं जी फरमाइश दा केड़ा गीत लैके साडे तक अगले फोन कॉलरस पहुँचे ने साडे तक। शुक्रिया जी, बहुत बहुत तुहाडा स्वागत। सत श्री अकाल जी, कौन ते कित्थों गल कर रहे हो जी?
1: सुखदेव सिंह बस्ती शेर जनक नगर जलंधर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल सुखदेव जी, ते तुसी इन्नी नेड़ियों कॉल करनी सी ते देखो जी बड़ी देर लाती। वाह वाह वाह, चलो जी देखो जी आपां फिर देखो आकाशवाणी ने तुहानू जी तुहाडे तुहानू वेले नहीं रहन देना।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ?
1: ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ।
0: ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ
1: ਓਕੇ,
0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।
1: ਧੰਨਵਾਦ।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच गुरु की महिमा बयान की गई है। पार ब्रह्म ते गुरु विच कोई भेद नहीं दस्या गया। सच्चा गुरु समर्थ हुंदा है, उस दे पास ऐसे गुर भाव ऐसे मंत्र हुंदे ने जो ओ पास बैठिया नू प्रदान करता है। उन्हां दे दुखां दी निवृत्ति वहमा परमा तो छुटकारा दिवा के उन्हां नू सच्चा ज्ञान बख्शता है। पूरे वैद दी न्याई नाम रूपी औखद बिना किसे भेदभाव दे सबना नू प्रदान करता है। बस उस दी किरपा दे पात्र बनन दी लोड़ है। मेरा बैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख परमेश्वर निरपाओ है, निरवैर है, जीवां दे भय दा खंडन करदा है, दुखां तों निवृत्ति प्रदान करदा है, भगत वच्छल बन के भगतां दी रख्या करदा है। निराकार है अकाल पुरख प्रभु, उसनू एक खिन विचेते कीत्यां कीते हुए करोड़ां अपराध माफ हो जांदे ने, मिट जांदे ने। ऐसे प्रभु नाल मन वडभागे प्राणियां दा लगदा है। फरमान है, भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकार है, कूट प्राद मिटे खिन पीतर, जा गुरमुख नाम समारे। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: पावखंडन दुख पंजन स्वामी पगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे किन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद पाव खंडन दुख भंजन स्वामी भगत वशल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन भीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दूतारे। रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहें दरबारे। सर्ब जियां के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापै रूप न लखियै तेरी कुदरत कौन बिचारे। जल थल महियल रविया सर्ब थाई अगम रूप गिरतारे। कीरत करें सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे। ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। ए पावन पवित्र शब्द शांति दे पुंज

0: ध्यान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोग प्रगासे देखत दरस पटक परम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदायत लुभत अल समूह जो किस्म सुबाते विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदास विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदास
1: तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरतवंत सदा सुख संपत रिद रसिद न छोड़े सत दान बड़ा अतवंत महाबल सेवक दास कहो एहो तथ ताहे कहां परवाह कहूं कि जाके बसीस तरयो गुर हाथ ताहे कहां परवाह कहूं कि जाके बसीस तरयो गुर हाथ।
2: तीन पवन परपुर सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गंधर्व खोजन

0: अबनासी अचल अजूनी संभो पुरखोत्तम अपार परे। करण कारण सम्राट सदा सोई सर्व जी मन ते आयो। श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो। सत गुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंदियो। अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो। श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो।
1: नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुभ अत हर के जोगणं अम्बरीख।

जेह सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटाखेन। जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै। जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावै। सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो। जेह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो। सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो। जेह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो।

0: अथ कथा है एक जी कश कही न जाई, सोटी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई। सोटी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई।
1: मोह मल विवश कियो, काम गह केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो झाड़ियो, जन्म काल कर जोड़ हुकम जो होए सो मने, भव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्न, सिर आत पात सचो तख्त जोग भोग संयुक्त बल, गुरु रामदास सच साल पण तू अटल राज अपग दल।
2: तू सतगुरु चो जुगी

त्रिसन भुज मान तान सुख पाया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बिलावल महला तीजा पूरे गुर ते वड़ियाई पाई अचिंत नाम वसया मन आई हउमै माया शब्द जलाई दार साचै गुर ते शोभा।

नानक मेर शरीर का एक रति कृतवाओ, जुग जुग फेर बुटाइए ज्ञानी बुझताहे, सतयुग संतोख का धर्म गिरथवाहो, त्रेते रथ जते का जोर गिरथवाहो।

हे गुरु चेते आवे, चेते आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोले जी वाहे गुरु, बोले जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, बबेक दान वसाह दान, परसा दान, दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार, बोले जी वाहे गुरु, बोले जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुर धामां दे, जिन्ना तो पंथ नू वछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नू बगसो, हे नवानिया दे मान, नतानिया दे तान, नियोटिया दी ओटा। तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ, आप जी दे पावन पवित्र स्थान। सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर सबद चौंकी, आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ, जिन्ना जिन्ना गुरमखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया।

जेकर सुत मने सब ते सुत खोए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जिते दाने अन के जिया बाज